नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को

0: नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong, and full of self-confidence. Speaking on the

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को
1: राम राम और साथ ही साथ नमस्कार
0: नमस्कार। और यमुना, क्या आज खास लेकर आई हो कार्यक्रम में? क्योंकि जब भी हम आएंगे तो हमारी बहनों को एक आस बनती है कि भाई देखें ये आज हमारे लिए क्या खास लाई हैं।
1: बिल्कुल कमलेश, एकदम सही कह रही हो। कार्यक्रम आपका है और आपके लिए है। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और साथ ही अपने परिवार की बगिया को इस सावन में, सावन मास में भक्ति भाव के साथ, प्रेम मनुहार के साथ हरा भरा बनाए रखें, बस यही कामना है हमारी।
0: बिल्कुल, और ये कामना तो देखो हर बहन करती है, क्योंकि जैसे ही सावन सुन भी लेते हैं और एकदम ही लगता है कि कल से सावन का त्योहार शुरू होने वाला है, तो अलग ही उत्साह, अलग ही उमंग हमारे हृदय में, हमारे मतलब ये सूची के पूरे वातावरण में गूंज सी जाती है। सबसे पहले छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी कहते हैं हम भी जाएंगे शिव पर जल चढ़ाने, और माएं भी कहेंगे कि हाँ भाई तुम भी जरूर जाना, क्योंकि जब तुम अब सीखोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि सावन के महीने का क्या महत्व है।
1: और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये माह होता है ना, बहुत लोगों की कुछ चाहत होती है, वो कुंवारी कंधे हो कि अगर वर की चाहत हो या किसी को अपने कैरियर में राह बनाने की, आसान करने की बात हो, तो कहते हैं शिव होली की महिमा बहुत अपार है, उनकी पूजा करने से, उनके सामने नतमस्तक होने से वो बहुत ही हमारा भला करते हैं। और खास करके एक बात और है, सुहागिने इस सावन मास में अपने सुहाग को अमर बनाने के लिए, हमेशा अच्छा सुख समृद्धि से भरपूर रखने के लिए भी शिव के महिमा का गुणगान करती है।
0: बिल्कुल, और मैंने तो ये भी देखा है कि ये सावन के पहले दिन से ही बहनों ने जो है अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन ली हैं, कुछ ने लाल, हरी और पीली, इन तीनों का जो है ना कॉम्बो बनाकर वो पहना हुआ है, तो उसमें खनकती हुई चूड़ियां सच में बड़ी अच्छी लगती है। जब सुबह जल अर्पित करने के लिए जाओ और जब ऐसे मतलब सज धज कर बहने जाती है, तो सच में वो नजारा ना बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे बढ़िया बात ये कि इस बहाने हमें वार त्योहारों का पता चलता है, हमारे जो सांस्कृतिक महत्व है उसके बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ जो आस पड़ोस में एक अपना परंपराएं कैसी हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में हमें पता है कि सावन का क्या महत्व है, लेकिन आपको नहीं पता, देखा देखी फिर वो भी हमसे पूछेंगे कि भाई आप इतना सब कुछ कह रहे हैं तो इसका महत्व क्या है।
1: तो महत्व की भी बात कर लेते हैं, तो जो हमारा धार्मिक और जो पौराणिक महत्व है उसकी हम बात करें, तो पुराणों के अनुसार सावन मास का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि इसी माह पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी।
0: अच्छा, तभी जो आपने बोला कि जो कुंवारी कन्याएं हैं या जिनकी शादी हो चुकी है वो शिव की उपासना जो वो इसीलिए करती हैं। और एक प्रसंग मुझे भी पता है, वो जो समुद्र मंथन का प्रसंग था, क्योंकि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और जिसमें निकला था हलाहल विष, तो शिव जी ने अपने कंठ में उनको धारण किया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और उनकी पूजा का जो ताप है वो शांत करने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया जाता है और दूध भी चढ़ाया जाता है। और हमारे गांव में कुछ जगह ये भी परंपरा है कि इस सावन के महीने में वो जो दूध है ना वो नहीं पीते हैं, वो कहते हैं कि जो हरा चारा होता है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई विषैले पदार्थ चले गए हों और वो गाय भैंस के अंदर आ जाएंगे, फिर वो दूध के अंदर आएंगे, जो उस दूध को पिएगा तो बीमार हो जाएगा। तो कुछ बहनें इस पूरे महीने जो है दूध का त्याग कर देती हैं।
1: तो ऐसी कुछ पौराणिक मान्यताएं और कुछ हमारी किंवदंतियां और कुछ हमारी बड़ों बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई कुछ बातें, वो सारी चीजें सम्मिलित होती हैं हमारे इस सम्मिलित रहती हमारे जो बातचीत का विषय होता है। और खास करके अगर कहें तो हमारी जीवन की जो दिनचर्या है उसमें हम सारी चीजों को समाहित करके लेकर के हम चलते हैं, तो भक्ति भाव में डूबने की बात है कमलेश और शिव की महिमा की बात है। सावन का मास चल रहा है तो भक्ति भाव में अपनी श्रोताओं को भी हम थोड़ा सा सराबोर करते हैं।
0: ठीक है,

0: माँ की ममता, माँ का प्यार शिशु का पहला सच्चा उपहार।
1: बिल्कुल, और माँ का दूध अमृत समान, इनसे खिलता हर नन्हा प्राण। तो माँ की ममता की बात करें और उनके दुग्ध की बात करें तो माँ के दूध के बिना बच्चा तो अधूरा होता है।
0: बिल्कुल, और ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण है, सबको मालूम है, और बार बार हम भी बताते हैं और जो हमारे बुजुर्ग बहने हैं वो भी समय समय पर बेटियों को समझाते हैं कि भाई जो माँ का दूध है वो हमारे बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कमलेश की, आज की जनरेशन की हम बात करें तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी होती है कि अपना दूध हम क्यों पिलाएं। और सच कहें तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो माँ के दूध के पीने से बहुत ज्यादा बढ़ती है, और बच्चे में आप ये समझ लो संपूर्ण विकास होता है। बहुत जल्दी बच्चा ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी उसके शारीरिक विकास होते हैं, मानसिक विकास होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो

0: हमारा ये माँ का और बच्चे का जो संबंध है वो खास करके दूध पिलाने से लेकर के है, तो ये बहुत ही आत्मीयता का, बहुत ही मतलब एक सुकून पहुंचाने वाला पल होता है, इसे समझना होगा।
1: ये देखो ना कि जब एक माँ अपने शिशु को अपने छाती से लगा कर रखती
0: हाँ
1: है तो उसमें कितना उसको बल मिलता है, और जो उसका संक्रमण होता है वो भी कम होता है। और जब हम बात करें माँ के बारे में, तो माँ भी जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको रिकवरी में भी उसको भी आसानी होती है, और उसके भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जब बच्चा दूध पीता है तो उसकी वजह से उसकी वो बीमारियां कम हो जाती हैं, और उसके स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे जो है वो सुधार आता चला जाता है।
0: मतलब कुल मिला के माँ की बीमारियों का जो अगर देखा जाए तो जोखिम वो भी कम हो जाता है, स्वास्थ्य में सुधार भी होता है, खास करके बच्चे के विकास को लेके बहुत ही लाभदायक होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो अपने जीवन में लाना है, बहुत जरूरी है। जो सोचते हैं कि नहीं ऐसा करने से हमारा क्या कहते हैं कि यमन अवस्था
1: हमारा
0: रट जाएगा,
1: फिगर नहीं, हमारा
0: फिगर फिगर खराब हो जाएगा,
1: फिगर
0: सही
1: खराब हो
0: शब्दों में
1: जाएगा।
0: कहें तो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें और समझें इस चीज को कि माँ के दूध के द्वारा बच्चे का विकास कैसे हो
1: तो
0: सकता
1: ये
0: है।
1: देखो ना, जब आजकल भी या पहले भी जब कोई भी बच्चा एक दूसरे से लड़ता था तो कहते हैं अच्छा तूने माँ का दूध पिया है तो आ जरा मैदान में। तो जो ये मुहावरे भी बने हैं तो ऐसे
0: हाँ
1: थोड़ी बन गई हम
0: बिल्कुल
1: ना कुछ तो इनके पीछे कारण रहा होगा ना, और
0: नहीं,
1: भी
0: ये
1: उन्होंने
0: तो
1: भी तो दूध पिया है
0: अरे
1: ना।
0: सबसे बड़ी बात है कमलेश, आप देखो ना अपने आसपास में देखो कि जो बच्चा, आप कभी किसी जानवर के बच्चे को लेके देख लो,
1: बिल्कुल
0: अगर कहीं कोई पड़ा है उसे आप ला करके आप उसे बोतल से दूध पिला के बड़ा कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य को देख लो। और जो माँ का दूध पाया है, जो माँ के तन से लग करके दूध को पिया है, आप उसकी ताकत को देख लो, तो दोनों के विकास में जमीन आसमान आसमान का फर्क नजर आता है। तो ऐसे में देखा जाए तो सच कहें तो माँ का दूध बहुत ही लाभदायक है, आप उनसे उनको वंचित ना करें। और जितना हो सके 6 महीने, साल भर, 2 साल, पहले तो लोग 3-3 साल तक बच्चों को पिलाते थे, स्कूल पढ़ने जाते तब भी पी
1: पांच
0: देते थे,
1: पांच साल
0: 5-5 साल
1: तक
0: तक पढ़ाते थे।
1: वो
0: तो
1: कहते
0: ये
1: बड़ा
0: चीज,
1: मुश्किल होता था, और कई
0: हाँ
1: बार जो है हमारे जो बुजुर्ग बहनें बताती हैं अरे इसकी इसकी बात छोड़ ये बस्ता फेंक के, और ये बोलता था कि मुझे पहले दूध पीना
0: पिला
1: है।
0: दो।
1: और ऐसे से जब हम बातें सुनते तब लगता है कि तभी हम देखो हमारे समय में और आपके समय में ये सब चीजें चलती आ रही है, लेकिन अब जब हम युवा पीढ़ी को देखते हैं हो सकता है कुछ बहनों को बुरा भी लग रहा हो कि भाई हम यहाँ पर बैठ कर और उनको ये चीजें बता रहे हैं, लेकिन हम सही तो बता रहे हैं। ये देखो ना कि जो ईश्वर ने इतने अच्छा गुणवत्ता वाला आपको दूध दिया हुआ है और उसको जब शिशु को पिलाना है तो उसको वंचित क्यों कर रही हो।
0: एक एक कारण और है, उसमें एक बात बताना बहुत जरूरी है, बहुत सी माओं को शिकायत भी होती है कि हमें दूध आता ही नहीं, उतरता ही नहीं, उसके पीछे कारण है। कहते हैं ना कि जैसे सतावर है और जो मेवे होते हैं, पीपल होता है, इन सारी चीजों का जब मसाला बना करके मतलब जब बच्चा जन्म दे देता है और बना के जब पिलाया जाता है तो अपने आप बहुत सारे दूध आ जाते हैं। सतावर वगैरह जो है वो दूध का काम करता है, जड़ी होती है हमारी। तो पुरानी ऐसी चीजें हैं जो पुराने लोग खाते पीते थे, अगर वो देखा जाए आज की जनरेशन में भी है, आप उसे यूज करिए, आप में भी स्तनपान कराने की पूरी क्षमता डेवलप होगी और आप मतलब स्वस्थ रहेंगी। सबसे बड़ी बात है आप हल्का महसूस करेंगी अपने स्वास्थ्य से, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो ये थोड़ी सी समझने की बात है, थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी बातों को बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है कमलेश।
1: बिल्कुल। और जो इस बार की थीम रखी गई है वो रखी है जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान जो प्रभावी है उसे और मजबूत बनाए।
0: बिल्कुल मजबूत बनाएंगे। और माँ का दूध जब कोई पीता है और माँ जब कुछ कहती है तो कुछ इस तरीके से कहती है।

0: कमलेश, सावन का मास जब आता है तो इसमें बहुत से लोग पर्व हैं, झूला पड़ते हैं, कजरी गाई जाती है, वर्षा के गीत गाए जाते हैं और ग्रामीण महिलाओं की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भी उभर कर सामने आती हैं।
1: ये तो है। और जब आप ये वाली बात कह रही हो तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना अपने बहनों को एक वार्ता ही सुनवा दूं। और वार्ता है सावन की लोक पर्व और ग्रामीण महिलाओं की सांस्कृतिक परंपराएं। और इसके वार्ताकार हैं सुमन वर्मा जो शिक्षिका हैं। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।

के चारों तरफ की हरियाली और रिमझिम बरसती बूंदे संकेत दे रही है कि सावन आ गया है। सबको मस्ती से भरने, सब में भक्ति रमाने, भागा भागा सावन आ चुका है और अपने साथ लाया है ढेरों त्योहार, ढेरों खुशियां। कोई सोलह सिंगार कर रहा है, कोई भक्ति रस में डूबकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने कंधे पर गंगा जल भर अपने प्यारे शिव को जल अर्पित कर रहा है। चारों तरफ मस्ती और भक्ति को फैलाने वाला सावन का महीना साढ़ महीने का अंत होता है। लोग भीषण गर्मी से व्याकुल थे और जैसे ही सावन की झड़ी लगी और चारों तरफ हरियाली फैली तो लोग भी मस्ती से भर गए और गाने लगे सावन।